मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

0: क्यों हर जाते माँ राजू बाबा आई पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माता नुआंदी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान दा वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे दा एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान दा हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई पाल तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी विंगर ना होया। गुस्से विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रार्थना की मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी महिला मेरी औलाद पुठे पाठ पढ़े जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी तो मैं इसी सलाह दिया कि लोग हरना किस्म भी भूल जाएंगे।

मन की इच्छ पुजाई। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे पाई, जिस परमात्मा ने जिस प्रभु ने हर वेले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है, सेवका वांग उस दी भक्ति करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई। साहिबजादे असहते अकह कष्ट सहारदे होए शहीदी पा गए। धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

जियो तुमरी कृपा ते तुझ पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिंदु जा और ना कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब सब जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

रखे गुरु सूरे, हल्त पल्त प्रभ आप सवारे, कार्य होए तले पूरे, हर नाम जपत सुख सहजे, हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होत साधु तुरे, आवण जान रहे थित पाई, जल मरन के मिटे वसूरे, गुर नारायण दाई गुरु, गुर सच्चा सिद्धनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जन मानक सब बनिहार, हर गुण गाओ साफ सफाई, हर गुण गाओ

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप।

काती अकिरत कन में कोई ना रखी, विश्वास काती अकिरत कन, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसे नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

शराब चिरनी है ते मनुख दी कोपरी विच बने एक रत्तू भरे कपड़े दे नाल बीबी तक के लजा रही। रस्ते विच एक मुसाफिर पुछ कर दे बीबी कुत्ते दा मास शराब चिरनी है मनुख दी कोपरी विच बने ते इसनू तू टक के क्यों लजा रही ऐसे।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं। उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं। भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल।

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने निताने हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते।

के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो कि तेरे होर चले जाओ, मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी कि तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी, सिखा ने कहा

उसने कुरान शरीफ की कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे की गऊ बना के कसम खादी है ये साडे ते हमला नहीं करनगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हों ते भरोसा ना करो, इन्हों कसमां तोड़निया ने साडे ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते भाई मान सिंह

नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नो प्यारी समझे, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहिबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के

मिया खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता सिखी छड़ दिती पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी कोई जीवना है सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना धर्म दे राह ते चल के मरना देश कौम दी सेवा

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमा तोड़ दितिया, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमा तोड़ दितिया। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

गवा के जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इस वी लकीर टपी

गुरु साहब होर अगे चले जान अपना इंतजाम कर लें। ए गल सारे ने विचार के

कि दूरों कोई देखे ते पता लगे कि गुरु दा दल ऐस पासे। खिदराने दी टाप तो थोड़ी दूर एक उची टिब्बी ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघां समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए।

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणन शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नु भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साहे बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नु अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोउ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सोछाले उछाले म्यान विच तेग कटी हथा विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने के ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया हुण भाई मां सिंह मुदड़े मोपे है सेंट दा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मां सिंह अरदास पिया करदा है

भाई मां सिंह दा प्यार देखिया ते गुरु साहिबा दीआं अखां विच अथरू आ गए। अथरू किरे भाई मां सिंह दीआं गल्लां ते जा पए, मुंह विच पाणी पाया। भाई मां सिंह ने अखां खोलियां, अखां दे विच कलगी दी लिशक पई, हाथ जुड़े ते गुरु साहिब जी बेबल होए। भाई मां सिंह नूं छाती नाल लाया ते कहंदे ने बेटा मैं आ गया, मंग की चाहिदा है, अज जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। भाई मां सिंह हाथ जोड़े हुए ने, पातशाह टूटी गंढ लै, ओ जेड़ा कागज ओ बेदावा जिदे ते लिखे तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, ओ बेदावा पार दे, टुट्टियां नू मेल लै अपने चरणा विच जगह दे दे। गुरु साहिबा ने ओ कागज हाली भी संभाल के रखिया, कागज कढ़िया, ओ बेदावा भाई मां सिंह ने दिखाया। ओ कागज उस वेले पाड़िया, टुकड़े हवा विच उड़ा दिते, बेदावा पाटिया। भाई मां सिंह ने शुक्र कीता, अज सुरखरु हो गए, गुरु ने बख्श दिता। हुण गुरु साहिबा ने कहा मां सिया पंथ वास्ते ते बहुत कुछ ले लिया, कुछ अपने वास्ते मंग, कहें ता जिंदगी दे दें, राज दे दें, अज जो मंगेगा तैनू मिलेगा। पर धन है जे गुरु ते सिख भी घट ने। भाई मां सिंह कहंदे ने पातशाह कुछ नहीं चाहिदा, तेरी गोद विच जान निकल जाए होर मैनू की चाहिदा, तेरे चरणा विच जगह मिले इस तू वड़ा सुख और केड़ा हो सकदा है। राज ना चाहू मुक्त ना चाहू मन प्रीत चरण कमलारे, अपने चरणा विच जगह दे होर कुछ नहीं चाहिदा। जदों ये गल कही साहिबा ने भाई मां सिंह नूं अपने गल दे नाल लाया। भाई मां सिंह ने हुण आखरी वारी धन सतगुरु कहा, मुंह बंद हो गया, अखां बंद हो गई, हथां दा जुट खुल गया, भाई मां सिंह पूरा हो गया। ओ नैन मीटे गए से जुट हथ दा खुल पया से, ओ सिख पूरा हो गया, गुरु गोद प्यारा वसया, दरबार उज्जल मुखड़ा ले जाए सरूपे वसया। ते गुरु साहिबा ने भाई मां सिंह नूं वर दिता, जाओ महा सिंह जय ममलोक, जा मां सिया मेरे देश जा, सदा बसो कब नै तैं सोख,

कि फलाना पूरा हो गया। नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने। वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मान सिंह, एक ओदा मरना जड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना

ते नाले वर दिता। इस जगह दा नाम हुण मुकुत सर होवेगा। जेड़ा इथे आएगा प्यार शरदा नाल, ओ मुक्ति नूं प्राप्त होवेगा। ओ जो मंगेगा उस नूं प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुकुत सर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है, ओ इन्हां शहीदां नूं भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले जाना वारियां, जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नू सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती ते सानू राह दसिया। ऐ भाई जेड़ा सिखी गवा के पत धो के जिउंदा है, ओदा जिउणा

महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हां नूं दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया, उन्हां नूं अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे, रहत बैत विच रवे, गुरु दे उपदेश ते चले।

शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित।

ही कुछ शांति या ठंडक पहुंचा सकती है। मन नू आत्मा नू ठंडक नहीं पहुंचा सकती। चंदन मस्तक ते लाउंदे ने इसे वास्ते कि मस्तक विच दिमाग हुंदा है और दिमाग विच अनेकां फतूर हुंदे ने। दिमाग विच फतूर होवे, दिमाग विच क्रोध उत्पन्न हो जाए, सारा शरीर क्रोधा अग्नि दे विच थर थर कंबण लगदा है। मस्तक ते चंदन लाउण दा प्रतीक है शांति दा प्रदायक। लेकिन जे मन विच अग्नि होवे, क्रोध दी अग्नि, ते मस्तक ते चंदन लाया है, मन दी अग्नि नहीं बुझेगी। ओ ते तां बुझेगी जे इसनू हरी नाम दा रंग चढ़ावेगा, परमेश्वर दे नाम दी इसनू शांति मिलेगी। ओदा चिंतन करके इस मन नू शीतलता प्राप्त होवेगी। जरा ध्यान देना, जालम ने एक ऐसा कांड रचया जो इतिहास विच इस तो पहला किधरे दृष्टि नहीं आउंदा। इस कलयुग दी ते क्या गल है, पिछले जड़े बीते हुए समय ने युग ने उना विच भी ऐसी घटना किधरे सुनने विच नहीं आउंदी, पढ़ने विच नहीं आउंदी। पट्टी तैयार कीती गई है, उत्ते लोह रखी है, हुक्म दिता जालम ने एदे हेठा अग बालो, लकड़ा लिया कि अग बाली गई। उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत, ऐसे हाल विच आखे आ गया गुरु अर्जन पातशाह जी नू, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असा वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असा वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया, चौंकड़ा ला लिया इस तवी दे उत्ते और कह

और आप इतनी शांति नाल सब कुछ बर्दाश्त करी जा रहे हैं। हजूर कहन लगे, इना दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क रही है, इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन भड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ए हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नु एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे को।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।